0: आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज।
1: Thank you.

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाएं और माशरे को जोड़ने

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालई। द मरगानो फग आवाजुना औ द फिजा ताजा सुकून। दा वक्ते चिखपल जरत सुकून वरकड़े औखपल वरस बखा सोच सरा पेल कड़े। राजई चे योशु द खुशाले द मुस्का औ मुजबतु खबरु सरा। तासो अवरई रेडियो अमन 88.4 कर।

0: खान क्या हाल है, कैसे हो, वेलकम टू द शो। शो बहुत मस्त एंड जबरदस्त है, तसे पट पट पर गलाए और मुर्तो पाता ना वाला गेदा आ है ई बात से अचानक अचानक करो ले साइडो देर जो तमना गुर कलर से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: सो खबर करे किम सिना
1: छोटे में इश्क रखना
0: छोटे में सो मो की खबर रखला पा खबर दे के छ माल वन को
1: जी आ तो मैं
0: साइडो देर जो तमना यो जहान मनना साइडो नो बिल्कुल नवीन खेलो रन तम खबर के साइडो जैसे कि मैं मन पेड़ आ कलो काट का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वो जरा डेर जूता मना यो नड़े मना यो जहान।

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
2: The Awaaz de the Aman. The Awaaz de the Pakistan. The Awaaz de the Radio Aman 88.4 Network.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
4: द करक अनूर शो खो अखल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगी दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औखकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है सोखची डीचमिस बीचमिस अरचिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून के द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबेता उकड़े 0331-32-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरक

0: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज़ रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: द करक अनूर शो खल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पाखपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़न बीमारी او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. د نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-32-55-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: समस्यालाई तर होइछ हैन बिल्कुल प्रोग्राम से पला खबर था चिमिस प्रोग्राम नन विनर छौती नन विनर छले खाना बिल्कुल दर्ता ओसौ खाना
1: जी तक तो गेम ना सामे बल्लो बल्लो किसी दरोड़े बिल्कुल खबर था किसी किम नहीं था तरोड़ ले अंजलि पतंजलि बजंजलि खान विले मरावर सजने पीपी अली खान दा बिल्कुल शसाव कह देगा ना अंजलि पतंजलि बजंजलि खान विले मरावर सजने पीपी अली खान धरे साले तेज तेज अंजलि पतंजलि बजंजलि खान विले मरावर सजने पीपी अली खान तेज तेज धरे साले सही तो बिल्कुल पता होगा कि प्रोग्राम से दावा सुख करता सभी सोच आखे ना मस्त किम निकला मैसेज प्रोग्राम से बिल्कुल विनर मौज मस्ती विनर सुख के ना ओए वजीर मस्जिद हट के दौड़े और सर सर पनिशियो ने गेम गेम गेम गेम गेम से बिल्कुल नहीं गेम हुआ था एक है ना बिल्कुल द विनर उसी किमने कहना सुख रुसी आओ तू सर तशावे विनर उसको कर दिन बिल्कुल घोष भरता हूँ सर विनर विनर विनर विनर वजीर मसीरे अटके दावड़े टोल पसरो बन लुसिन अक्षर दे मिस्टर जीना चा चा खड़े वो थे उचा था कि सही तो बिल्कुल दावड़े खड़ी दी खाटा के खड़ी दी और मसीर हाँ खड़ी दी बनिशियों ने हाँ खड़ी दी और डेर नूर हाँ डेर जूत लिसनर दी ना मिस्टर जीना खड़ी दी सही तो प्रोग्राम से बिल्कुल बापस के दाई दासु के ना छागा दादा मरावी साइडो अब ये वर्ष दर ताऊ शाओ और एमिर नन विनर उसे सुख के ना अब ये वर्ष दर ताऊ शाओ जी प्रोग्राम से विनर सुख थे वो आखिर ना मुझसे कलर रोन से बंद तो मुकाबिर की जीरो नौ सौ सताईस दो सौ इक्यानवे दो सौ बयानवे साइडो जीरो नौ दो सात दोनों एक दोनों दो मैंने बिल्कुल प्रोग्राम से कॉल के और सर सर किम लिखे ना विनर थी किम लिखे ना बिल्कुल यार विनर सुख रु दिन साइडो बिल्कुल प्रोग्राम से विनर ना होमर से जो कलर साहब बोली चाहे सारे वाले की गाफ समक्ष लाइव अस्सलाम वालेकुम कल ड्राफ से डेर जो था ना यो जहान मना बिल्कुल कल ड्राफ से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी और मैं सुख किम सिना
2: दा गेम
1: और था क्या कहना जैसे डर पर होगी मरा अक्सर रश भी क्या ना ऐसे सीरियस प्रोग्राम ने चीवा की गेम युवा की गाफ समक्ष लाइव सर हुई
2: बल्दर
1: पर खान दो अंजलि पतंजलि बजंजलि खान विले मरावर सजने पीपी अली खान
2: अंजलि पतंजलि बजंजलि खान विले मरावर सवाल पतिले
1: आखिर तो बिया बिया बिया अंजलि पतंजलि बजंजलि खान विले मरावर सजने पीपी अली खान
2: अंजलि पतंजलि बजंजलि
1: अच्छा और बस खेर देख गया था खेर आउट था क्या बोल तो मैं कह के चंबल से भी
2: बस
1: सर ढेर जो तमन्ना यो जहान मरना देर देर ढेर जो तमन्ना बिल्कुल बिल्कुल रोली आगा सो अस्सलाम वालेकुम सो खबर कर किम जिना ग्रुपीना हो खत्म दिखा ना ग्रुपीना हो सन मीना खत्म सुन ग्रुपीना खत्म सुन जके दगा से अच्छे नोम मने काल के बिल्कुल अखपल नोम सा अखपल नोम पहचान ग्रुपे ना खत्म के ग्रुपे पहचान जोन मा जोड़ावे के ना सिर्फ साढ़े दे पर आज होता है अच्छा गेम क्रशे है कि गेम में रोड़ाई अंजलि पतंजलि बजंजलि खान विले जने विले मरावर से जने पीपी अली खान
3: कौन नवा
1: अच्छा जन खुद
3: अंजलि पतंजलि बजंजलि खान वेले मरवसदने बीबी खान अंजलि पतंजलि बजंजलि जनी खान वेले मरवसदने बीबी खान अंजलि पतंजलि बजंजलि खान वेले मरवसदने बीबी खान
1: ना ना ना बिल्कुल से खतो से सादे से साओ न पशो खले कने बियाओ या खेर दम बिया
3: अंजलि पतंजलि बजंजलि खान वेले मरवसदने बीबी खान अंजलि पतंजलि बजंजलि बजंजलि खान वेले बीबी खान पतंजलि बजंजलि खान वेले मरवसदने बीबी
1: खान खतो से पशे कने खोरके
3: हां बिया तो या
1: हां बिया या ڈیرو جو تمنا سلمینا بس ورسل ڈیرو جو تمنا یو جہان مرنا شکریہ بالکل پروگرام تھا گیم تھا بالکل رسلا شے سائیڈو گیم تھا روشے گھنا ہاں جلی پتنجلی بجن جلی خان فلم روشے پی پی علی خان گیم تھا کھیلا زلینا بھائی دور کے زلینا بھائی دور کے